सर्वत समूह खालसे जी की अरदास श्री वाहेगुरु जी के पास, जहां जहां गुरु खालसा दिशाए तह तह रक्षा रियात, बिरद की पैदर पंथ की जीत श्री साहिब दी सहाय। खालसे जी दे बोल बाले बोला रे।

दस्तु हि बृहस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि।

नाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पायत अजाप देव भूतना सदीव तुहि तुहि उचरत है। नभ के उड़ेत जो नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पता।

न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं अलेखं अवेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धरूपं नहि जान जाई।

कहूं दैद बानी कहूं जय छगंद्रव की नर कहानी कहूं राजसी साध गीता वसी हो कहूं जोग विद्या दरेता बसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दान भी हो कहूं जज विद्या धरे मान भी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं

कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सिखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरेदं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाग्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी।

जयांचे जगात करता सदैव हरता सनातन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय कर्म वरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतपान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय

त्रास जेह रोग सोग नहीं जोग जुगत जेह त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय भंग जेह नेत नेत उचरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेव जेह अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अच्छा अतोल जेह ध्यान काज मुंजन आनंद कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कलब एक आसन पितांत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तत् पावत न पार कई उर्ध बाह देसन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक जुलंत कई सिमृत सासर दुजरंत वेद कई गोग काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई बौन हार कई गर्त कोट मृत को हार कई गर्त साक पै पत्र फछ नई तप देव हो वत प्रतछ कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैक दास पायत न पार कई तीर्थ तीर्थ भरम सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदप दास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्र उजरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहू अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ ऋत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जन निवास कई अग्र ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तदव दास पायत अंत कई गर्त कोट विद्या विचार नहीं तदव देश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचंग देव देव बरंग सब की नी दीन जमीन जमा जय रचंग सर्व मकी नमका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न सोग न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग फणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेत ज्योत भुजंग की ये देव देव सराद पितंग खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय दात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्न

गण किन्नर जा छुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपय सुत सिंध दो मुख ताव तपय कई कल्पन लो तब ताव करे नहीं नैग कृपा नित पान पर जय फोकड़ धर्म सभय तह एक चित्त कृपा निध को जप है ते आभव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति

गंज है, भंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अबाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सूख है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सूच है, न ग्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न चित्र है, न चित्र के विभूत है,

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत वेग है बली अरूप राग रंग है न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिन्ह वर्ण है वे अंत है अनंत है अनंत तेज जानिए भूम बिज है सदा छिज तेज मानिए न आद है न प्याद है अगाध।

गजाधपि नराधपि गरंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ वेखिय अगाध आद देव की अनाद पात मानिए नजात पात मंत्र मित्र सत्र।

जस गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैस नंगे बिखे बिराजे सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म सिख स्वरूप रात दिवस न मध उर्द

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता दृष्ट कर्ता जगत मय जय गाथ। भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाद श्रीपद परम पुरख।

नारद आदक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कूट कष्ट तुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोद सोद थके महासुर।

कवन सृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चेतन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान, गुरु के सो के गमन।

डावरू डबंगे बबर बवंगे हुजाफरंगे तेज बरंग गुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखंड दमके अधसिद्ध चमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन रंभक बर्दन दैद जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन भूमा का सलूर्द थे दामनी प्रहासन सुक्षम निवासन श्रेष्ठ प्रकार।

करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होशी महासुर मर्दन भरम विनाशन धरम तुझे घुंगुरु घमंकण सत्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम तुझे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय होशी महासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुर वंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृद्ध मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय होशी सब ठौर निवासन बाय पताल कासन ले संकटी निवारण धम उधारण तेज प्रकरखण धुंध तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आदा नाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तप

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रण के साल है दान के देवैया महामान के बटैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरोध।

पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर देजी गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना की तेग बांध यार बके यार भी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मारे कंधारी गुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछान निज काम है। मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे जिन मचीन के सीजने आवे देव तिथि आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तो है जायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान गो महेश गंग दान गो अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साथ दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुँचत है चिट्ठी की चिंगार पह

मन को कारक है, साधन को रचक है, गुणन को उपहार है, सिद्ध को स्वरूप है, के बुद्ध को विभूत है, के क्रोध का भूत है, के अच्छा अविनाशी है, काम को कुरिंदा है, के खूबी को देहंदा है, गनी मन करिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, काल हूं के काल है, के शत्रुण के साल है, के मित्रण को भोगत है, के वृद्धता की पासी है, जो गुहों को जंत्र है, के तेज हूं को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है, के बुद्ध हूं को घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है, के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है नर है, विश्व को भरण है, गया पदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पारावार हूँ को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गा वह बसी हलपी ध्याव पूर्वी न पार पावया सत्य नाश है, देवन को देव महादेव हूँ के देव है, निरंजन अभेव नाद विनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ, कजोग है धरैया द्रुम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरा वध छाछ कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छप कालिंद्र के कूल के, हंसनी सिसी हरु महीरा सी हुसैनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ कढ़ रूपा कैसी रामपुर, सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के, चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बूर, सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहांस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार पकांसी बिलंदाबाद, कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के प्रतंगी तेरे गीत गायत है, फकरी गंधारी गोर कखरी गर्देजा जारी पावन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है, पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र तेयताप।

0: उसने बहुत बेदोशियां नूं मारना कीता जिस करके तुरकां दा तेज प्रताप घट गया तुरकां दा राज नाश होना है
1: नहीं बहोर सका अब कोई
0: ऐ प्रकार उसनूं कोई मोड़ नहीं सकदा है
1: ईश्वर की इच्छा अस होई
0: असीं तां चाहुंदे सी वी तूं बच जावे थोड़ा किते राज रह जावे पर लगदा है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु दी भी यही इच्छा है
1: अब भी उतर सक्यो नह पूरा
0: ऐ प्रकार हुण तेनू असी एक सवाल पाया सी तेनू एक सेवा बख्शी सी ते तू भी पूरा नहीं उतर सकया है
1: रसत बहुत बिद हो यस पूरा
0: ऐ प्रकार तू सारी गल नू जानदा है तू झूठ बोलिया है
1: बहादुर शाह लज्जायो
0: ए जदो महाराज कलगीधर पातशाह जी ने वचन कहे बहादुर शाह बड़ा शर्मिंदा होया है
1: प्रभु जी दीजा रौर हटायो
0: बेनती करदा महाराज कृपा करो कृपा करके जो हुण बंदेव सिंह बहादुर नूं भेजिया है उसनूं हटा देना करो क्योंकि दिल्ली दे तख्त दे विच दिल्ली रोज चिट्ठियां आ रही सी फलानी थां ते सिंघां ने मोर्चे फतेह कर ले कदे किते हले कर रहे सन सिंघ इस प्रकार ये बेनती करदा महाराज कृपा करो बंदे बहादुर नूं हुण हटाउणा करो
1: बुलाओ सल्तन मुझ प्रप्त दीना
0: इस प्रकार जदों तक मेरी मैनू तुसी राज भाग बख्शिया है जदों तक मेरा राज है कृपा करो मैनू सुखी नाल रहण देना करो
1: करो कृपा होए संकट हीना
0: कृपा करो तुसी मैनू आप राज भाग बख्शिया है महाराज कृपा करो मैनू उतने दिन सुखी नाल बिताउण दिओ

0: गुरु के खालसे पंथ ने वड़ी जित प्राप्त कीती है।
1: आयो प्रताप अमल ठहरायो।
0: यो जदों खालसा जी गुरु के खालसे ने गुरु के सिंघां ने सूबिआं नूं मार देना कीता, जदों खालसे पंथ दा प्रताप वधिया है फिर पंथ ने अपना हुकम चलाउणा शुरू कीता है। हुण जितों कितों वड्डे वड्डे जिहड़े सूबे सी सरहंद हो गया, समाणा सडोरा सारे इस सूबिआं तों सिंघ हाला लैण लग गए, टैक्स वसूलण लग गए हन।
1: सदा सरोवर पुन चल गए।
0: फिर महाराज जदों मोर्चे फतेह होए पहाड़ भी जित ले असी, फिर जो महाराज फिर असी श्री अमृतसर साहब सरोवर जो है उथे दर्शन ददारे नु गुरु का खालसा पंथ उतरिया है।
1: भजन करे कलुखत है।
0: ए प्रकार रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। ए प्रकार महाराज जी तिथे जाके असी इशनान पानी करके यों सरोवरां च इशनान करके अपने कलुखत मैल नूं हरना कीता पापा रूपी नूं।
1: सुंदर हर मंदर के अंदर।
0: ए प्रकार जो आप जी का श्रोमणी सुंदर हर मंदर है, प्रभ हर मंदर सोहना, जिस मैं मानक लाल महाराज आप जी का जो हर मंदिर सोना है शोभनीक है, जिथे वड़ी वड़ियाई है जिस दी ओथे गुरु का खालसा पंथ।
1: दर्शन करियो थेरे शुभ नंदर।
0: उस दे अंदर गुरु का खालसा पंथ सजया जाके अदे दर्शन कीते हन सारे।
1: गर्भत चाहत वड़ियाई।
0: हुण ओथे बंदा बहादुर भी महाराज साडे नाल गया सी, इथे आके हंकारिया गया, इसने हंकार च आके बहुत बोल कबोल भी बोले, इथे आके चाहुंदा है अपनी वड्याई करौना।
1: पास खालसे ते गुर आई।
0: महाराज आप जी ने ते गुरु खालसे पंथ नूं गुरियाई बख्शी है। आप जी ने इस नूं हुकम कीता सी इन्हां पंथ नूं गुरियाई बख्शी है। आप जी ने इस नूं हुकम कीता सी इन्हां पंजां सिंघां

से जिन जुग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरे

सोई थीसी जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनु कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया।

देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकण को सेवगुण सुख दियो सत्रण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जा बुध करख करा कर तारा प्रजाधर तब देह अपारा जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते

सुहाई, दुष्ट दोख ते लिहो पचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अलदुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रभु धर्म युद्ध के

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। श्री वाहिगुरु जी अरदास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरय घर नौन दिया वेधाय। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कलगीधर जी पिता पंथ देवाली अमृत के दाते। शमशेर बहादुर जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां जी दे आत्मक स्वरूप। धन धन साहिब श्री

0: कृपान कलगीधर स्वामी दान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
1: बोले।

अड़े बिन सुदुरुक ने ना पायो बिन सुदुरुक ने ना पायो सदगुरु चाप रखे उनकर प्रडाल सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विच मह चका उत मह विचार है जिन चाहे समझ दिलाया जग जीवन दाता पाया जग

पौड़ी सत बिठो बारे जित मिले कसम संभालिया जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नित जगत ने हालिया कसम छोड़ दे लगे डूबे सेवन जारिया सत होए गोता।